0: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 8574-8410।
1: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
2: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
3: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
2: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
3: And you didn't pay those massive roaming charges?
2: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
4: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
1: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your like.

जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती सनबंध।

जो तुद भावै साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड़ हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए।

साई भलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई। है भी होसी जाए ना जासी, रचना जिन रचाई। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी, माया जिन उपाई। कर कर वेखे की ता अपना, जिव तिस दी वड्याई।

हत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनात जुग जुग एको वेस एक दूजी बोला खोए लख होवें लखवीस

जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत।

0: Disha Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carries, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Canton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
1: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
2: बिजनेस के कार्ड पेमेंट चार्जेस देख के कभी सोचा है
3: यार मैं कहीं ज्यादा तो नहीं दे रहा? पता लगाने का एक ही तरीका है, अपना लेटेस्ट स्टेटमेंट TW Pays को भेजिए और 24 आवर्स में पाइए एक फ्री कंपैरिजन कोड। विजिट twpays.com/laika या कॉल कीजिए 0203129-9840। TW Pays, हर ट्रांजैक्शन पर ज्यादा बचत।
4: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting, but it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes. Check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
5: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
6: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Disha Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Kenton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected.
3: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
4: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
5: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिज, है ना?
6: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
5: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
7: एट ब्रेस्ट कैंसर नाउ वी नो चेकिंग योर ब्रेस्ट कैन फील डॉन्टिंग, बट इट्स अ सिंपल एज TLC, टच लुक check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
8: Hi, this is John Abraham.
9: Hi, main hu Deepika Padukone.
10: Hi, this is Papon.
11: Hi, this is Ehsan from Shankar Ehsan Loy.
12: Hi, I'm Nadeem Saifi from the Nadeem Shravan Jodi.
13: Hi, Sankit Tiwari.
14: Hi, this is Saleem.
15: Hi, this is Suleiman from Saleem Suleiman. Keep listening to us.
16: Like a radio.
2: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
17: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: सामने है पर नजर आती नहीं कैसे करूं ये मैं रेडियो पर हूं
1: ये ट्विन 90s फ्रॉम घायल एंड प्रेम इफ यू जस्ट ट्यून्ड इन वेलकम अबोर्ड
2: वो आती नहीं द सन इज आउट विद लाइका रेडियोस समर हिट्स

बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। It's अंताक्षरी टाइम विद खुश।

0: जिंदगी वहाँ सैक्टो माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
2: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757 ग्रीन्स बाय डैन्यूब प्राइम लोकेशन
1: हाई अप्रिसिएशन
2: इन दुबई
3: वेलकम टू द जंगल
1: फिल्म बिल्कुल फेक
3: हमारे फिल्म आर्मी वाली
4: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है
1: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो
3: और स्टार कास्ट है
1: अक्षय कुमार सुनील शेट्टी अर्शद वारसी परेश रावल एंड ह्यूज स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास
5: कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या
1: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून
6: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
7: किस लिए फिल्म में
8: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
9: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
8: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
9: And you didn't pay those massive roaming charges?
8: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
10: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100+ countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
11: Gorgeous Couture. For every celebration, every moment, and every unforgettable entrance.
10: Discover Gorgeous Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1-1LR.
11: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories, and stylish outfits for men and women.
10: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
11: Gorgeous Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
10: Visit cardinalscouture.co.uk.
12: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well-planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
13: Minar Jewelers. Agar aap sona bechna chahte hain ya valuation karwana chahte hain, to uski sahi qeemat ke liye tashreef le jaye. ये मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 02208767627
14: The people of Britain have bought loads of noise cancelling headphones. With a Barclaycard Rewards credit card, you could get cash back on eligible purchases and no fees on spending overseas. What you buy is your business. Rewarding you is ours. Subject to financial status, T's and C's apply. Check if you're eligible at barclaycard.co.uk. Representative example, 28.9% APR representative variable and 28.9% purchase rate per annum based on a £1,200 credit limit.
15: A Leica Radio Classic plays now.

0: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket, not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
1: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
0: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915 or visit cashbackremortgage.co.uk.
1: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
2: Why do I get vaccinated? I get vaccinated because it's a much safer way for our immune systems to learn how to fight diseases than getting the disease itself. For me and my family, we get vaccinated because health matters. If you have any questions about vaccinations, visit the NHS website or speak to your GP, nurse or local pharmacist.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410। दैट्स 0208574 8410।
4: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
5: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है। अल नूर टेस्ट द डिफरेंस।

Star Track of the Hour sponsored by Star Tours, Coach, Eurostar या Flight. आप चूज करो अपना स्टाइल. बाकी सब Star Tours Experience संभाल लेता है. Visit StarTours.co.uk.

0: Biker Radio.
1: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
2: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
1: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
2: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
1: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
2: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
1: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
3: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods, Hayes, from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
4: 105 super hit shows pachi have London ma avi rahyu che ek dhamakedar international Gujarati comedy Jai's Entertainment laine avi rahya che sakhna rejo husband ji. Leena Shah ane Sameer Shah sathe hasyani full guarantee. Fridays 26 June 27 Patidar Samaj Wembley Park ma ratna 8 vage. Tickets booking mate visit karo eventbrite.co.uk, call karo Videorama athwa call karo Mr. B 07860-280655. Sakhna rejo husband ji.
5: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है क्योंकि वो नया होता है.
6: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
7: दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे, उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है.
6: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2, now in cinemas.
8: दुल्हन के लिए मेकअप.
6: For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram.
9: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान. फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410.
10: साउथ हॉल ट्रेवल. Auto protected.
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
12: Leica Radio.
0: Time for another Leica Love Classic. We'll be right back.